0: सच कहे जे होंदा
1: चुल्ले ते पकती रोटी सच है
2: मिट्टी चुगदी फसल सच है
1: गुरु दी पानी सच है सतगुर प्यारे सच्चे दी बाह फड़दे हुंदे ने।

सतगुर होई दयाल दसरदा पूरी है, सतगुर होई दयाल न कबहू झूरी है, सतगुर होई दयाल त दुख ना जानी है, सतगुर होई दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख ने दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान प्रभ संधु के नाल।

0: What is the reason?
1: This is the effect of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
4: S&S Lawyers को इन सारे सवालों के जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लेन ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
5: किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप दा नाम इक्को है ओ है एरन मिल्स एक्यूरा एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला अते करण शर्मा नु कॉल करो नंबर वन सर्विस नंबर वन रेट्स प्रोफेशनल अते ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना होवे एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 905-828-5800 ते कॉल करो Till now video 1980 ton Punjabi community de vich hazir hai Gore Road and Ebenezer te located ne IPTV ate Gurbani Radio diyan services de layi bhave tusi 4K IPTV super fast ultra high definition box lena ya tode kol box hega par tusi Till now video de customer banna chahunde ho no buffering no freezing 4K service layi purana box kade vi upgrade update karwao tusi Till now video nu call karo main product Till now video da Gurbani Radio India leke jaan waste best gift jis vich sampurn paath hai ga shri guru granth sahib ji da nitnem diyan sariyan baaniyan ne taddi wara ne 300 shabd ne 110-220 da charger ate ear plug de naal naal 20 ghante di battery toronto airport to leke thode pind tak da thoda saathi Till now video da gurbani radio iptv di top di service ya Till now video gurbani radio go road ebenezer satte din khulle ne 11 to 8 905-204-1313 905-204-1313 ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647-504-1557 ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੇ

0: लग्जरी सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते बंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है। मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है।
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है।
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल।
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील लई याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
4: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: डोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन तीन लोकेशंस तो सर्व कर देने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165।
1: ओहो सर्दी च हीट नहीं चलती ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुने करदे आ संधू साहब ना गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6840।
4: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
6: याद रखो मोना मेंगी From Insurance for You
5: 416-509-1509
6: or visit insuranceforyou.ca।
7: ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ 905-678-1200 ਕਟਾਰੀਆ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 2883 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸੈਕੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 4550 Ebenezer Road, Brampton।
8: Stargate Logistics North America di one of the fastest growing company hire kar rahe ne AZ drivers jekar tuhanu vi hai kam di pal ta aaj hi sampark karo Stargate Logistics de naal work locally ya cross border serve karde ne GTA Midwest Montreal te North America de vich Stargate Logistics aaj hi call karo 905-564-9292 905-564-9292।
7: ਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗਾਓ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਓ ਸੁਪਰ ਡੀਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੋਸਰੀ ਤੇ ਡਾਲਰ ਬਚਾਓ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਫਰੂਟ ਮੀਟ ਚਿਲਡ ਬੀਅਰ ਡਾਈਨ ਇਨ ਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਖੁੱਲਦਾ ਏ ਤੰਦੂਰੀ ਬਾਈਟ ਚਾਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਦਲੇ ਫੂਡ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਠਾਓ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਕਾਲ ਕਮਾਓ 905-913-1666 905-913-1666 ਜਾਂ ਪਹੁੰਚੋ 11665 ਮੈਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ ਮੇਫੀਲਡ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ।
8: GTA ਦੀ ਬੈਸਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ।
7: ਅਲਫਾ ਟਰਾਂਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ AZ ਡਰਾਈਵਰਸ ਟੀਮ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਵਧੀਆ ਪੇ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
8: ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਲੱਖੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 905-799-1525 905-799-1525 ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 105 ਈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਟਨ।
9: CWC Immigration is one of the largest immigration companies and they have 4 offices in Canada and 12 in India. I know Mr. Kheran personally. I went to their office and I met their clients. I think they believe in quality and they are dedicated to providing competent services to the clients.
10: Sitariyan di pasand, thodi sariyan di pasand. CWC Immigration. Express entry, work permit, family sponsorship, immigration appeals, immigration de har masle da hal. CWC Immigration. 905-670-4444.
11: CCA ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਨੋਟਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
12: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
11: ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ।
13: ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਵੀਟਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਆਬਾ ਸਵੀਟ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ।
8: 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਵੀਟਸ ਲਈ
14: ਦੁਆਬਾ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ।
8: ਕਰੋ ਡਾਈਨ ਇਨ, ਟੇਕ ਆਊਟ, ਟਿਫਨ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਟਰਿੰਗ ਅਕ੍ਰੋਸ GTA। ਬਲਕ ਆਰਡਰ ਲਈ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।
3: नहीं रहेगी खाने की काट। एक बारी आओ अपना मार्ट, होलसेल ग्रोसरी खरीदो अनबीटेबल प्राइजेस दे एट अपना मार्ट। इंडियन पाकिस्तानी ग्रोसरी ते नाले दालां ते सब्जियां भी, ओ भी अनबीटेबल प्राइजेस दे। शेयर ब्रांड दे स्पाइसेस ते दालां पहली बारी ओंटारियो विच मिलनगियां अपना मार्ट विच। विजिट करो 142 कैनेडी रोड साउथ।
15: किधर चल गए कहंदे इत्थे ही बैठे आ। तो एडवरटाइजमेंट भी बड़ी जरूरी होंगी है, थोड़ा अपना ही प्रोग्राम विरासत जी विरासत टीवी फोन मैं रीसैट किया आ। सो अज साडा लेआउट जिहड़ा चैनल दे वैदर भी आंदी आ ते खबर भी थले आंदी आ पंजाबी विच इंग्लिश वो भी चल जाएगा क्योंकि बहुत सारा सिस्टम लाना पैंदा नवें स्टूडियो विच। व्हाट्सएप कॉल चलती है बारी सब नाल गलबात करांगे 416-837-1515 दे व्हाट्सएप कॉल ते ही उहनां नाल गलबात करांगे जरूर। थोड़ा अपना ही प्रोग्राम विरासत रेडियो ते विरासत टीवी हैगा। स्पॉन्सर बिना पैरों का धन्नवाद सर जिहड़े सानूं इत्थे बैठण दा मौका दिंदे आ, थोड़ी आवाज़ बन के इत्थे बैठी दा थोड़े लई कुछ ना कुछ करन दी कोशिश करी दी हैगी आ। सो वेलकम करते हैं थोड़ा थोड़े जिते टैक्स मैसेज है बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जल्दी थोड़े नाल भी गल्लबात आपां करांगे जरूर थ्रू वे स्पैशलाइज ट्रेलर वाले मेरे वीर हैं। इस अमेजिंग वे साडे लोगों ने किन्नी तरक्की की आ, स्पैशलाइज ट्रेलर बना के देंदे हैं जिहड़े फ्लैट बैड होंगे कोयल वाले होंगे ड्रॉप डैक ट्रेलर होंगे जिहड़े भी ट्रेलर चाहिए बना के देंदे आ। स्पैशली फ्लैट बैड दे विच माहर हैं। नंबर मैं देता 905-219-0080 1170 फीसट ड्राइव ते हैं मिसाग दे विच। किसी तरह का ट्रेलर बनाना हो तुसी बना सकते हो। जॉब की भाल भी जॉबा ये हजे भी अवेलेबल हैं। मैं नंबर दस दा इन्हों वैल्डर चाहिए गोवाफ विच इधर सारे पास वैल्डर चाहिए हैं। 30-40 डॉलर पर घंटे मिलते डिपेंड थोड़ा एक्सपीरियंस डिपेंड करता। तो लीड आफ्टर वैल्डर चाहिए आ मिसागा विच टिग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो 25-37 डॉलर एक घंटे दे रहे हैं। 437-242-3158 गलबात कर सकते हो। मोना महंगी जी का भी मैसेज आया। सो मोना जी तुसी जे मैनू कॉल करे तुसी मैनू कॉल कर सकते हो। व्हाट्सएप ते कॉल चलदी है, व्हाट्सएप ते कॉल कर सकते हो। माफ कर देना अज थोड़ा सिस्टम जिस हिसाब से मैं चलाना चाहता था नहीं चलिया। तो कई बार मुश्किल आ जाती, मुश्किल तो दूर होने की कोशिश करी दी। लो जी बारिया साहब की गलबात लाइन मिल गई आ। बारिया साहब पहले दसो, पहला आवाज मेरी आ रही है? कोशिश की बैल कह जाना लग्या रहा जिथे 6-7 लाइना बड़िया घट हों 15-20 कर दी थोड़ी उस उधरों हजे बैल लाइन थोड़ी डिले कर दी हो जाएगा सिस्टम सैट। खबर वाले चलते हैं फिर थोड़ी जहाँ ठहर के मोना महंगी जी ने भी आप गलबात कर दी। खबर से आप नजर रखते हैं जरूर
16: जी। बिल्कुल जी, परमात्मा ने चाहे तो अपना सारा कुछ सैट होगा जी। सरोते वो अपने जुड़न गए
15: जी,
16: मौका भी मिलेगा। आप भी चाहते हैं हमेशा सरोते साढ़े नाल जुड़े रहन जी। तो बिना देरी कित्या आप कुछ अहम खबर से झाती मरवावे। कल एक खबर कल तो 24 घंटे बड़ी चर्चा च हैगी जी के श्रोमणी अकाली दल दे बहुत ही सीनियर आगू रहे आ जी परमहंस सिंह बंटी रमाणा कल इत्थे अपने आए सीगे आपां कह सकदे आ टोरंटो पीयरसन एयरपोर्ट ते। एक सियासी ट्रिप सीगा जी अपनी टीम दे नाल, उहनां नूं इत्थों वापस मोड़िया गया। इह घटनाक्रम की हैगा, इहदे नाल की जुड़ियां गल्लां हैगियां ने? मैं क्योंकि आपां पंजाब दी गल थोड़ी घट करदे आ क्योंकि इह जिहड़ी गल्लबात आ सारी घटनाक्रम ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ NRI ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈਗੀ ਆ
15: ਜੀ।
16: ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ NRI ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

0: Cherokee.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: प्रोग्राम पंजाबी लहरा नवी सिद्धू दे नाल अपनी बिजनेस दी एडवरटाइजमेंट दे लई या होर कोई भी जानकारी लैण दे लई कॉल करो 647-504-1557 647-504-1557

0: Chandler Drive, Brampton. Major intersection, Steeles and Kennedy, 9054512600.
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हाँ ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इम्प्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉट सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज सी। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। ऑनेस्टली असी तां हुण हर फंक्शन लई तवा किचन ही चूज करांगे। Try Tawa Kitchen for the best catering in town. Fresh food, great service and unforgettable taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton. 905-790-1699. 905-790-1699.
2: F-154 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 416-302-4146-302-9941।
3: सुनो जी, किथे हो? 11:30 हो गया रात दे, घरे नहीं आना अज?
4: मैं सेविंग कर रहा, नाले ग्रोसरी खरीद रहा, नजारा आ रहा हैगा।
3: झूठ बोलन दी आदत नहीं की तुहाडी? रात नु 11:30 केड़ा ग्रोसरी स्टोर खुला होया?
4: फ्रेश ग्रोसरी डिपो रात दे 12 बजे तक खुलदे ने, जिन्ना दा कहंदे एक डोर तो बड़ो दूजे तो निकलो। सेविंग 100 डॉलर दी। 905-458-1331 स्टेपल बुश टॉप रूम ते स्टेपल बुश दा इंटरसेक्शन। फ्रेश ग्रोसरी डिपो 905-458-1300।
5: पापा पापा, सुनते क्यों नहीं? चॉकलेट लेनी है।
6: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
7: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
8: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
9: माय फेवरेट, मेरी पहली पसंद।
10: आई लव इट।
11: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती।
9: हम सबकी पसंद
12: रेडियो आवाज।
9: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 एंड सैटरडे 10 to 1 ऑन AM 530। नॉन स्टॉप कॉल्स, नॉन स्टॉप टॉक्स। Promote your business with us. Contact 416-518-3200.

0: आवाज खूबसूरत सुविधा खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्क सी चलो डिजिटल ए एम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो आप सब का हार्दिक स्वागत करते उम्मीद खुशगवार दिन चढ़ती कला वाला निरपौ निरवैर रोशनी रस्ते दिखावेगी तो तुम चलते रहोगे। जिंदगी इको चीज़ सीखी है कि भय और डर नाल नहीं जीना। भय और डर जिहड़ा हैगा वह एक नरक है जिउंदे जी जो इंसान भोगदा है। सो तुसी जरूर अज दे दिन नू रोशनी रस्ते दिखावेगी तो चलते रहोगे अपने डरां नू अंदरों कढ के नवीं चीज़ों वल चलते रहोगे तो जिंदगी तुहानू जो बाहां फलार के इंतजार कर रही है जरूर एक नवी लीह ते लैके जाएगी। तो शो दे विच मैं हमदीप सिंह बैंजपाल 9-13 स्टूडियो दी घड़ी उत्ते कुछ खबरां जिन्हां विचों पिछले 48 घंटे च 2 पुलिस ऑफिसर्स का मारिया जाना एक मिस्टर बाली जिहड़े कि साउथ एशियन कम्यूनिटी तों ने सड़क के उपर मारे गए तो दूसरे एक गोलीबारी की घटना US कौंसलेट के उपर गोली चली सी। इनफॉर्मेशन के तहत जिहड़ी पुलिस की टीम पहुंची सी तो इत्थों दूसरे पास्यों जो लोग दोषी ने उन्होंने गोली चला दित्ती तो एक पुलिस ऑफिसर जिहड़ा इस दुनिया नूं रुखसत कर गया है। और असी अपने शो दे राहीं ते अपनी कम्यूनिटी दे राहीं बड़ा दुख जाहर कर रहे हैं कि जो सानूं प्रोटैक्ट करते हैं उन्हां दी लाइफ अगर खतरे च होवे तां फिर असी अपने बारे सोच सकते हैं। तो जिथे टोरंटो तो लैके अलग अलग पुलिस चीफ्स जिहड़े इस ते वरी कर रहे हैं चिंता जता रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर सेफ होने चाहिए ने होर भी ज़्यादा। तो नाल डग फोर्ड की लग चुकी है बुरी तरह के नाल। डग फोर्ड के लिए जिथे 2 कैंडिडेट जिहड़े लिबरल के टॉप आ रहे हैं उत्थे दी रेटिंग थले सिट रहे ने चलाकी दे नाल। जिस तरह मैं तुहानू कहा सी कि इलैक्शन दे विच एक किस्म की एक गेम खेडी गई सी डग फोर्ड वल्लों। तुसी भुल जांदे हो मैं नहीं भुलदा हुंदा छेती। डग फोर्ड ने इलैक्शन अर्ली कराते जे हुण 1 अक्तूबर च इलैक्शन करवाउंदा 97% सी कि डग फोर्ड इलैक्शन हार जांदा। जिस तरह की स्टेट की इकोनमी है जिस तरह के स्टेट के हालात ने यह लग रहा कि इन लोगों को बाऊआ जोड़े इलैक्शन जित के गए हुए हैं बाऊ बने हुए हैं जिम्मे इंडिया नहीं दी बाऊ कि तनखा मिल जानी है सरकारी दफ्तर च बैठो 4 गल्लां मारो 2 ऐलान करो ओ गई ओ गई 11 दा दिन लैके कुड़ी ओ गई। तो इस तरह का माहौल जोड़ा है डग फोर्ड होना का बनया हुआ तो रेटिंग लगातार गिर रही है। अन्ने हुए लोग जोड़े अन्ने वाह जो वोट पाते होंगे ने कि बाऊ लीडर तो कोई है नहीं दूजे पास लीडर तो कोई है नहीं। तो वह दूजे पास लीडर डोनल्ड ट्रंप भी आया इस किस्म का। तो अज की डेट से डग फोर्ड ट्रेड डील्स तो परे भजया हुआ गल्ले नहीं करता कोई ट्रेड डील के बारे कोई गल नहीं कर रहा। 4-5 स्टंट खेडे शराब चुकाती बोतल चुकाती एक अद्धी कंपनी का काम बंद कराता चलो जी वह स्टंट खेडन तो बाद इलैक्शन जित गया। पर अज की रेटिंग डग फोर्ड लैंडलॉर्ड टैनर बोर्ड 9-9, 10-10 महीने लोगों के घर के उत्ते कब्जे ने। ओंटेरियो एक अजी स्टेट है जिथे यह गंदगी फैली हुई है। दूसरे पास क्राइम के उपर देख लो 2 पुलिस वाले मारे गए हूँ तक। नंबर 3 के उत्ते हैल्थ केयर के कट करी जा रहा सारे कास्ते। तुसी दस दो जे कोई थोड़े चो सुनदा फोन कि वह 15 मिनटां च डॉक्टर के क्लीनिक तो वेला हो जाता 1-1.5 घंटा डॉक्टर तुरंत इदा ट्रीट करते हैं जिम्मे सरकारी मुलाजम होंगे ने मतलब तुहाडे वल झाकदा भी नहीं कोई तो तुहाडी कोई केयर भी नहीं करता। इहो जिहे क्लीनिक्स मैं जानता जिथे फोन ही नहीं चकते हैं भी अही किता ही मराओ। हैल्थ केयर का मामला हैल्थ केयर पे कर रही है सरकार पे कर रही है साढ़े टैक्स के पैसों चो तो डॉक्टर्स के दफ्तर वाले फोन ही नहीं चकते हैं। तुहाडी रिपोर्ट के जिड्डी मर्जी बीमारी आ जाए तुसी दोबारा जाना हुंदा उत्थे बहना हुंदा 2 घंटे फिर तुहानू दसदे ने यह नहीं कि उन्हां दी कॉल आजूगी कि तुसी बीमार हो फटाफट जाके स्पैशलिस्ट नूं मिलो। वह चीज़ा जिहड़ियां हैल्थ दी केयर आ वह गई तेल लैण तो वह सब कुछ जिहड़ा हैगा चल रहा। तो इहदे नाल नाल डग फोर्ड साहब की खासियत है कि अगे इंश्योरेंस कंपनीज लुटिंग पहला तो बहाना सी घरां दी प्राइज़ बहुत वध गई हुण तां गिर भी बहुत गई। तो इन्हां दी हजे भुख खत्म नहीं हो रही अखे गड्डियां चोरी हो रही गड्डियां चोरी असी तां रोक नहीं सकते ना सानू तां फिर तुसी फड़ के बिठा लोगे कि चोर नूं फड़िया क्यों तुसी थोड़ी यही कीता ही तुसी चोर नूं हाथ लाया कि मैं चलो तुसी जेल दे अंदर। ये जिहड़े नॉनसेंस लॉज ने ये इन्हां ने चेंज करने जिन्हां दी मैं गल करदा पिया डग फोर्ड होना की इन्हां ने चेंज करने ते ये चुप चुपीते बैठे ने जिवें लॉ ट्रंप दा कोई बंदा उधरों आके चेंज करूगा। दिस इज़ ऑल हैपनिंग। सो होर भी बहुत सारिया खबरें जिन्हों के फीफा दे जिहड़े सॉकर के मैच ने उन्होंने उपर गल चल रही उत्थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से गल चल रही है कि $400 की एक टिकट बेची गई। दैट्स ओके सर तुम भी तो इंश्योरेंस कंपनियां साढ़े चढ़ाई हुई ने जो उन्होंने 400 टिकट बेच ली फिर की होगा जिन्हें देखना होगा जाऊगा जिन्हें नहीं जाना वो नहीं जाऊगा। ये तो ट्रेंड हों रौला पाना अज की डेट के रौला पा दो दलजीत की टिकट $1500 की बैगी मेरे वर्गा 150 की वो उपरली सीट मल मलो मल्ली खरीद लेंदा जी कि 35 की मिलनी चाहिए सी मैंने ਆਪਣੇ ਆਪ 150 ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 1500 ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 35 ਵਾਲੀ ਤਾਂ 150 ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਆ। ਇਹ ਵੇਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੈਟਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸੂਗਾ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਆ, ਉਹ AI ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਜੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ ਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ। ਡਾਟੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਰੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ 9-18 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਇਕ ਕੁਇਕ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਸ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਗਏ। ਫਰੈਸ਼ ਕਰੋਸੀ ਡਿਪੂ ਭਾਜੀ, ਕੁਇਕਲੀ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ ਸਾਰਾ?
1: ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡੀਪੂ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਡੀਲਸ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਵਾਗ ਬੱਕਰੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਚਾਹ ਸੋ ਸਿਰਫ $8.99 $9 ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, $16 ਤੋਂ ਸਿਰਫ $9 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਲ ਵੀਟ ਆਟਾ ਸਿਰਫ $13 ਦਾ ਬੈਗ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ $21 to $22 ਦਾ ਬੈਗ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਲੰਬੀ ਆ ਜੀ, ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਓਰਿਜਨਲ ਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆਟਾ ਸਿਰਫ $13 ਦਾ ਬੈਗ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਰਾੜ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਿਰਫ $25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $30 to $32 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਲਿਮਕਾ ਤੇ ਥਮਸ ਅਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ 99 cents ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਕਾ ਦੇ ਕੈਨ ਐਜ਼ ਮਚ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਗਰੋਸਰੀ ਡਿਪੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਇਹਦੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਪਨੀਰ 3

0: पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600
1: और मजीद सिंह का नाम है जी जी तुसी ऑन एयर हो प्लीज
2: थैंक यू सो मच भाजी प्रोग्राम सुधे सारे श्रोते मेरे वालों एक्सटेंशन वालों प्यार प्रीत सत श्रीकाल जी इस वीकेंड दी स्पेशल डील्स ने सब तो पहला जिन्हें भी क्लाइंट इस टाइम अपनी कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लोज कर रहे हैं या परसनल यूज के पांच प्रीमियम अपलायंसिस का बंडल देख रहे हैं सो ये 36 इंच वाइड का फुल साइज आइस एंड वाटर डिस्पेंसर ऑन द डोर वाला फुल साइज फ्रिज है ग्लास टॉप का इलेक्ट्रिक स्टोव है कन्वैक्शन एयर फ्राई ओवन के बिल्ट इन स्टेनलैस स्टील की डिशवाशर है विद फ्रंट लोड का स्टेनलैस स्टील कलर का वॉशर से ड्रायर है $6500 की वैल्यू के पांच प्रीमियम अपलायंसिस का बंडल है स्टेनलैस स्टील के जिड़े कि सिर्फ $3999 च इस वीकेंड तुसी अपलायंस टेंशन से लगा सकते हैं जिन्हें भी कस्टमर इस टाइम अपना किचन रेनोवेट कर रहे हैं या तुसी बिल्डर के नाम नवा घर बुक किया तो बिल्ट इन अपलायंसिस दे विच जे डील देख रहे हो बिल्ट इन अपलायंसिस का पूरा बंडल जिदे विच 36 इंच का आइस एंड वाटर डिस्पेंसर वाला काउंटर डेप्थ बिल्ट इन फ्रिज 36 इंच का बिल्ट इन कुकटॉप 30 इंच का बिल्ट इन वाल ओवन ते माइक्रोवेव कॉम्बीनेशन विद बिल्ट इन स्टेनलैस स्टील की डिशवाशर $13,000 की रेगुलर प्राइस तो घटा के सिर्फ $69.99 बिल्ट इन अपलायंस का पूरे का पूरा बंडल तुसी लगा सकते हैं लॉन्ड्री सैक्शन जिन्हें भी क्लाइंट डील देख रहे हैं फ्रंट लोड का स्टेनलैस स्टील कलर का अल्ट्रा लार्ज कपैसिटी का वाईफाई कनेक्टिविटी वाला पेयर है जिहड़ा कि $2200 की प्राइस तो घटा के $1499 इस वीकेंड तुसी अपलायंस डिवीजन ते लगा सकते हैं ते लास्ट दे विच टीवी सैक्शन दे विच बिग स्क्रीन 98 इंच का सैमसंग ब्रांड का एलईडी स्मार्ट 4K टीवी $3000 की प्राइस तो घटा के सिर्फ $1899 इस वीकेंड तुसी अपलायंस डिवीजन ते लगा सकते हैं दो लोकेशन तो असीं सर्व करते हैं ब्रैम्पटन वैस्ट मिसीसागा रोड ते स्टील ते ब्रैम्पटन ईस्ट एयरपोर्ट रोड एंड क्लार्क नंबर टू कॉल इज 905-450-0054-950-0054 अपलायंस जंक्शन थैंक यू सो मच फॉर द टाइम भाजी
1: थैंक यू सो मच

0: मुझसे शुरू में कितनी जानती है कि फादर फिक्रां पर चले गया, चाहे अज भी है कल भी है। मैं कहने लगा कि बच्चा जो माँ के पेट च आ गया हों तो वो दुनिया च जन्म लैन वाला हों, तो पिता के दिमाग के जन्म ले लिया, प्यो हों कि मैं अगर अच्छा भविख कि बनूंगा। सो अच्छे भविख के लिए हमेशा अच्छी व्यवंथबंदियां ही काम होती है। फिलहाल अपनी आवाज में जो सुन रहे हो इस समय पीएसएनएल का ट्रैक 6 जिथे वेस्ट चेक उड़ान भर के उतर चुकी है, तो थकान दूर करने लिए लोगों बाहर कड़ूगा, क्योंकि कैनेडा जो लोग नवे तरह ने पीएसएनएल तो सुनते हुए सन जा रहे हैं। इस समय टैली तो सारे ही 400 सीरीज हाईवेज तकरीबन 400-500 किलोमीटर के एरिए सन सुन रहे हो। हर रोज मैंने एक कॉल थोड़ा आता है बिजनेस के प्रमोशन के वास्ते। बिजनेस प्रमोशन लिए मैं हमेशा कहना हूँ कि छज तो बोले छानी क्यों, यानी कि असी तो बोलीए पर नाल साडे एडवरटाइजर भी बोलो। ज्योति आपके पास कितने लोग रेडियो सुन के पहुंचे अभी तक? काफी पहुंचे हैं, थोड़े से पहुंचे हैं, बिल्कुल नहीं पहुंचे? ज्योति जी।
1: हेलो। हाँ जी, ज्योति फ्रॉम ग्रीन वैली गार्डन सेंटर।
0: क्वेश्चन था कि आपके पास कितने लोग आ रहे हैं सुन के रेडियो?
1: अभी अभी फिलहाल तो बहुत बिजी है, मॉर्निंग में सारे लाइक वेजिटेबल्स।
0: जब तक हम ऐड कर रहे हैं कितने लोग पहुंच रहे हैं सुन के आपके पास?
1: ओ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, वी हैड वेरी वेरी बिजी वीक्स फ्रॉम लास्ट 3-4 वीक्स। इट्स कॉन्स्टेंटली बिजी है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई बेलविल से आ रहा है तो कोई ब्रैडफोर्ड से, लंदन ऑन्टेरियो से, हर जगह से लोग आ रहे हैं।
0: तो मैं एक बेनती करूंगा आज फिर, आ वीकेंड बहुत सोहना वेदर है, बहुत सोहना। कल से लगातार तो आवाज देते रहना, लाइव चल रहा है। नंबर वन के उत्ते बूटिया की क्वालिटी ग्रीन वैली गार्डन सेंटर है, तुहानू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की याद करा दूंगा। जब तुम उत्ते जाते ना, फुलों के मेले लगते, बूटिया के मेले लगते, पौद्या के मेले लगते। नंबर टू, इन्हों की पनीरी स्पैशल स्पैशल नाइग्रा का लेते 14 एकड़ के ग्रीन हाउस के तैयार हुई है, तो उन्होंने कंसल्ट किया गया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाल, यानी कि जो सब्जियां होनगियां उन्होंने पेस्ट जमा ही इंडिया वाले आवे। तीसरा फुल, चौथे दरख्त, फलों वाले दरख्त घर लाने ने, फुल अपने आप बार बार निकलने वाले या सारा साल चलने वाले या कदे भी ना झड़न वाले या बार बार झड़ के नवे फुल लेके आने वाले, यानी कि इन्होंने फुलों की जानकारी नहीं होंगी किन्नी किन्नी दूर कि बूटा लगाना, कि रिओ पाना, धरती पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, धरती प्यार करने वाली जी रूह आ ग्रीन वैली गार्डन सेंटर से ना पहुंचे। मैं कहना कितने, मैं इन्होंने बूटे गिफ्ट किए ने, मेरा दोस्त अमन उसकी मम्मी डैडी बहुत शौक है बूटिया का। ज्योति मैंने 2 ट्रे उनको गिफ्ट की थी, बड़ी ट्रे। हाँ जी,
1: क्या बात है,
0: वो बहुत खुश रहते हैं, कहता सारा दिन फिर गार्डन हाउस के पिछे ही रहते हैं। सो ज्योति एक बार जरूर वाहवाही पड़ती है, बड़ी मेहनत की पूरी टीम ने। मैं धन्यवाद करता गुरदेव भाई जी उन्होंने, जिन्हें करके मैं ज्योति तक पहुंचा है। बहुत हम्बल काइंड परसन गुरदेव भाई जी, मैं नहीं अजा कोई इंसान देखा जी जिसे को इन्ना कुछ हो, इन्ना डाउन टू अर्थ होकर चले। सो जिते ग्रीन वैली ग्रुप नू रन करते हैं उत्थे नाल नाल होर बिजनेस भी चले। गुरदेव जी ने बहुत बहुत प्यार, ज्योति उन्होंने बहुत बहुत प्यार। ज्योति बहुत अच्छे तरीके ज्ञान सामती है, इतने तुम्हें दस दी है कि बूटा कितने कितने किमें किमें लगाना है, किन्नी देर बाद पानी देना है, किन्ने देर सब्जी आ जाऊगी, जे दूर लावा कि वधूगी, नेड़े लाऊंगी कि घटूगी। ज्योति जी आपका नंबर देने लगा 647 आपके पास ही तो ना, ये ज्योति 647-222 मेरे को लगता आवाज कट रही है, 647-222-5601
2: 647-222-5601 647 में माफी चाहूंगा, शायद तो भी आवाज घट आई है मेरी, है ना। टेक बात जी, यही कहना सी। हेलो,
3: हाँ जी अमन जी, सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल, तुसी की कहना सी?
3: माइक बंद होया जी तुहाडा।
2: ओ बल्ले, इहनू कहिंदे टेक्नीशियन।
3: हाँ जी हाँ जी, ते ओना ज्योति दी आवाज वधिया आंदी सी, तुहाडी तां इदां सी तां
2: खूह दे विच बैठा
3: होणा सुणदी नहीं सी। हाँ जी हाँ जी,
2: खूह दे विच बैठा होणा।
3: हाँ जी, खूह हुण वधिया जी, वधिया वधिया।
2: और मैं बाकी भाई और मैंने से पूछना चाहता हूँ, बाहर बनाओ आपके तक मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? सो ग्रीन वैली गार्डन सेंटर से वाकई जाना पड़ता है थोड़ा सारे का, वाकई जिते $2.5 के ट्रे मिल जाती है, एक 4-5 बूटे होंगे ने उत्थे रियो इन्होंने कोलों सर्टिफाइड ओंटेरियो के होम डिपू तो शॉपर जो है कैनेडियन टायर वर्गिया पे आता। तो ग्रीन वैली गार्डन सेंटर 2 लोकेशन ने, मेफील्ड एंड सैकेंड लोकेशन है, मेफील्ड एंड जो इंटरसैक्शन है मकवीन का, उत्थे ना ए एन डबल्यू आ उस प्लाजे के ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ 11665 ਮਕਵੀਨ ਡਰਾਈਵ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਟਨ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਯੋਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੁੱਡ ਬ੍ਰਿਜ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਂਬਰਿਜ, ਕਿਚਨ, ਵਾਟਲੂ, ਗੋਲਫ, ਹੈਮਿਲਟਨ, ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ, ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ 1.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਜੀ ਟੀ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ 2547 ਐਂਬਲਟਨ ਰੋਡ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਜੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਰੋਡ ਟੱਪ ਕੇ ਐਂਬਲਟਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਬਲਟਨ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਐਂਬਲਟਨ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨੌਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਆ ਸਟੀਲ, ਅਤੇ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਈਨ ਸਟਰੀਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਟੀਲ ਟੱਪ ਕੇ ਕੁਈਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੁਈਨ ਦੀ ਐਂਬਲਟਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ 'ਤੇ, ਦੇਖਿਓ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲੀ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ 6472256506 6472256501.

0: 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 32, 55, 80 हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
2: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 गोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450
3: मस्को का अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हैं हाई एंड दे फर्नीचर ना फुली फर्निश्ड है $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 feet दा पैड भी बनया है 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट कर दी है 12x30 feet दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है मस्कोका रूम भी फर्निश किया गया है पीछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222 बाय बाय 265 बाय बाय

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल दाल सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566 नोबेल फ्रेश फूड।
8: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
9: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे पीओ च जंट पढ़ दा विमला विलेज ला विलेज विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: तो सेकंड मॉर्गेज पर लोग रेट लेते हैं, फर्स्ट मॉर्गेज पर भी 7-8% 9% तक रेट देते हैं। पहली चीज ये देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सेकंड ये देखें टर्म्स कितनी है आपकी, आप 6 मंथ के लिए ले रहे हैं, 3 मंथ के लिए दे रहे हैं। अच्छा ले तो लिया आपने 6 मंथ 1 ईयर के लिए, उसके बाद रिन्यूअल के लिए दोबारा आपको एक्स्ट्रा फी देनी पड़ रही है ना, तो ये आपको बहुत जरूरी टर्म्स एंड कंडीशन रीड आउट द फाइन लाइन टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो केड़ी केड़ी टर्म्स एंड कंडीशन है, जस्ट रीड आउट वेरी क्लियरली। एंड तीसरा इम्पोर्टेंट है कि ओपन मॉर्गेज या क्लोज है, राइट? ओपन का ये फायदा होता है कि आप विद इन 3 मंथ भी अगर आप निकल जाए बाहर तो यू डू नॉट हैव टू पे द पेनल्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्राइवेट मॉर्गेज देखिए मिलना आसान है बट इट कैरी करना टफ है, राइट? और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी स्ट्रेटेजी की है, आफ्टर 6 मंथ example, if you take a private mortgage, now you want to move to the bank side. So, how you can move to the bank side? So, all sare questions, the answer jo hai, whenever the client comes to my office or work with me, make sure the client understands. So, you will be surprised, Kiran ji, the private mortgage rate is starting from 5.69%.
1: True. Mm-hmm.
0: 5.69%, राइट? नंबर वन। नंबर टू, टर्म जो है वो 1 ईयर से लेके 3 साल तक ले सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये मैं लाइन ऑफ क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, राइट? एग्जाम्पल है किसी का घर नहीं बिक रहा है, कोई जो है मॉर्गेज मिस कर रहा है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट मिस कर रहा है, आपके कमिटमेंट बहुत ज्यादा है, आपको कैश फ्लो चाहिए, पैसे चाहिए दोनों, तो आप पैसे लेने के लिए घर बेचने लिए आप इंतजार कर रहे हो, राइट? कि कब बिकेगा, कब सेल होगा, कब पैसे आएंगे हाथ में, तो आई नो इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, राइट? सो द बेस्ट अप्रोच ये है कि तुसी जो है लाइन ऑफ क्रेडिट ले सकते हो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेकंड फाइनेंस सेकंड मॉर्गेज। सो लाइन ऑफ क्रेडिट बैंक नाल भी अप्रोच कर सकते हो जी, अगर बैंक नाल तुम्हारा क्रेडिट चंगा है जी, तुम्हारी इनकम चंगी है तो वाई नॉट, बट इफ यू थिंक दैट थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ट्रक ड्राइवर हो, इमिग्रेशन बिजनेस में, कोई भी इसी इंडस्ट्री में जहां बिजनेस ज्यादा नहीं है, पैसे आपका पैसे नहीं बन रहे हैं, बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है आपका, घर में सिकनेस है, घर में लॉस ऑफ जॉब है, तो उस सूरत में दिस लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुड हेल्प यू। द रेट इज वेरी रीजनेबल विद अ वेरी लो फी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दिस इज कमिंग फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर टर्म विद नो अर्ली क्लोजर फी, देर इज नो पेनल्टी, ओपन है। जैसे कभी भी आप 3-6 महीने में बैंक नाल इफ यू डिसाइड टू मूव, सो यू डोंट हैव टू पे एनी पेनल्टी,
1: दैट्स ग्रेट।
0: सो दिस इज द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आई वांट टू शेयर इट ऑन टू आवर लिसनर्स। और साथ साथ जो है इम्पोर्टेंट बात ये भी है, अगर बैंक ने मॉर्गेज डिक्लाइन की है आपकी, आपने बैंक से नहीं हो रही है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट? आप इनकम बनाते हो, डिक्लेयर कम करते हो, इस तरह के इश्यूज हैं, और यू फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है घर की अप्रेजल जो है आपको उसका प्रॉब्लम है, घर की वैल्यू क्या है। इफ यू वॉन्ट टू चेक विथ मी विदाउट एनी कॉस्ट द होम वैल्यू, माई सेल्फ एंड माई टीम विल चेक द वैल्यू फॉर यू एंड विल गेट बैक टू यू, उसके बाद पेड अप्रेजल ना चलना है जी,
1: बिल्कुल जी,
0: तो उसके बाद आपको करके देन विल गो फॉर अ फर्दर डिस्कशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप डिफिकल्ट सिचुएशन में हो और आपको बाहर निकलना है, this kind of private financing would help you with a open term with no early closure fee, or sabse important baat hai is a line of credit, home equity line of credit. So Kiran ji bahut bahut dhanyawad once again, happy friday aapko aur team ko, aur jab bhi aap milna chahe phone karna chahe more than welcome.
1: बिल्कुल जी, और जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि जैसे कि उन्होंने बताया कि इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड तो नाल दी नाल अगर यू हैव अ बैड क्रेडिट और इफ यू नीड अ फंड्स क्विकली देन मुकेश चौहान कैन हेल्प यू। हिज नंबर इज 6475127000 ते तुसी जड़ी है जी इन्हां दे नाल गलबात कर सकते हैं। मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच किरण जी, टेक केयर।
1: बिल्कुल जी, ऐसे की मुकेश जी और नाल दी नाल साडी लाइन जिहड़ी है जी स्पेक्स एक्सप्रेस तो मैं लगता लाइन जिहड़ी है जी डिसकनेक्ट हो चुकी है, बट कोई गल नहीं, साडे नाल स्टूडियो दे विच जिहड़े है जी राकेश शर्मा जी भी जिहड़ा जी पहुंच चुके हैं। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू किरण जी, सारे श्रोतियां नु मेरे वालों भी प्यार भरी निघी सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब जी। किरण जी जिस तरह थानू पता ही है अपना तिया का मेला आ रहा 21 जून नू, आप सारे मतामा नू पैणा नू रिक्वेस्ट कर दें कि इस दिन ਆਪਣਾ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਤੇ

लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम ने ये मस्ती भरे रुख

0: रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।
1: आस दी किरण रे ऑफ होप नशा छुड़ाओ ते पुनर्वास केंद्र दयालपुरा कपूरथला। नशे दी एडिक्शन एक मानसिक बीमारी है, इस दा इलाज जल्द ते सौखा हो सकता है। आस दी किरण दा मनोरथ है कि नशे दी एडिक्शन करन वाले व्यक्ति अते परिवार नू इस मानसिक बीमारी तो छुटकारा दवाउणा। आधुनिक सहूलतां नाल लैस नशा छुड़ाऊ केंद्र आस दी किरण भारत सरकार वालों मंजूर शुदा है। तुहाडे परिवार का कोई व्यक्ति या दोस्त नशे दी एडिक्शन विच है तो जल्द इलाज लई 99-151-54-548।
0: बिल्कुल, नंबर है 9915154548 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਸਰਾਂਸ਼ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਨਾਉ ਗੁੱਡ ਹੈ ਜੀ।
0: ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਸਰਾਂਸ਼ ਹੁਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਾਂਸ਼, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਿਸਨਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅੱਜ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੰਡਿੰਗ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ?
2: गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट ही फीस पे करती है कॉलेज की, आपके पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा। इसके अलावा आपको रहने खाने के लिए गवर्नमेंट फंडिंग आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में देती है, 30,000-100,000 की फंडिंग है ये। इसमें से ग्रांट्स का पैसा आज की डेट में एग्जिस्ट करता है कितनी, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द फंडिंग इज नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ऑलरेडी बहुत लोग इसका लाइक बेनिफिट ले चुके हैं, आप पीछे ना रहें। लास्ट लाइक टाइम चल रहा है 22 जुलाई के बाद बैचेस खत्म है, तो उसके बाद तो सिर्फ लोन आएगा, गवर्नमेंट कट्स कर रही है ग्रांट्स में। नो,
0: वेरी गुड। सो सरांश का नंबर है 4,372,649
2: जब काम होता है क्लाइंट खुद ही दे जाते हैं हमें फीस। फीस कितनी है? 199 या 499, नो परसेंटेज, नो कमीशन, नो कैच। काम होने के बाद लेते हैं, तो कुछ क्लाइंट काम होने के बाद हमें भूल ही जाते हैं कि चलो काम हो गया, साइड चले।
0: चलो नहीं, भूलना नहीं चाहिए यार। जिस आदमी ने आपको 30,000 से लेकर $100,000 तक लेकर दिया, उसको भूलना नहीं चाहिए। 199-499 क्या चीज है यार, जब आपको इतने पैसे मिल रहे हैं तो सरांश की फीस दे दिया करो। ਇਹ ਫੀਸ ਨਾਲੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ ਹੈ 4372643175। ਤੇ ਸਰਾਂਸ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਲਸ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਆਵੇਗਾ?
2: ਹਾਂਜੀ, ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ 1st August ਸੇ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਸੈਂਪਲ ਲੇ, ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪੇ ਅਗਰ ਆਪ ਐਨਰੋਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਟੂ, ਉਨਕੋ ਅਪ ਟੂ 45,000 ਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਤੀ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਪਲ ਹੈ ਯਾ ਫਿਰ ਯੰਗ ਕਪਲ ਹੈ, एक बंदा पढ़ता है, 45,000 की फंडिंग आती है। इसमें से $25,000 तो ग्रांट ही है जी। लेकिन अगर यही कपल में से एक बंदा पढ़ता है 1 अगस्त के बाद स्टार्ट करता है स्किल डेवलपमेंट, 45,000 का 45,000 एवरीथिंग इज लोन, तो नो बेनिफिट। अभी एनरोल करें अगर आप फैमिली फाइव है तो अप टू 100,000 की फंडिंग आती है, 50,000 ग्रांट है। 1 अगस्त के बाद एनरोल करेंगे अगर आप, 100,000 का 100,000 ग्रांट है। आसान से कोर्सेज हैं जी, फुली ऑनलाइन है, घर के कंफर्ट से कितने ही क्लाइंट कर रहे हैं, एज लिमिट कुछ है नहीं और इतने लोग ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं, नो कैच, कोई इसमें ना कैच नहीं है, प्लीज इसको आप ध्यान रखें।
0: सरांश, जे कोई फैमिली ऑफ टू है या फैमिली ऑफ फाइव है, एस्टिमेट दो कितने पैसे मिल जाएंगे?
2: हाँ जी, फैमिली ऑफ टू को 45,000 एंड फैमिली ऑफ फाइव को 100,000। अब इसमें से हाफ पैसा इज नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स का आज की डेट में, जो रेस्ट अगर फैमिली ऑफ फाइव है 100,000 आता है आपको आपके खाते में डायरेक्ट, क्लाइंट्स को, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं इस केस में। 100,000 में से 50,000 ग्रांट है, 50,000 जो लोन है ना वो आपने 1.5 साल बाद लौटाना स्टार्ट करना है, तब तक ही 0% पे है। और 1.5 साल बाद भी सिर्फ 2.5% साल का ब्याज है, 50,000 का आपने 55,000 वापस करना है 10 साल के अंदर, नो क्रेडिट चेक, नो कोलेटरल, नो सिक्योरिटी, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, बैंक नहीं कर रहा, जितनी इनकम आपकी कम है, जितनी आपकी इनकम कम है, जितना किड ज्यादा है उतनी ज्यादा बेनिफिट है आपको, आपके अकाउंट फंडिंग आती है, नो कैच, पीआर सिटीजन, प्रोटेक्टेड पर्सन आपका स्टेटस होना चाहिए, इनकम 2024 के नोटिस असेसमेंट पे लेस देन $70,000 है तो ही आपको फायदा है सिर्फ इसका।
0: सरज नंबर 2 3 बार और 3 बार मैं दूंगा जो।
2: हाँ जी थैंक यू जी। नंबर है जी 437-264-31-75, 437-264-31-75, फोने कॉल करो जी, साढ़े ऑफिस आओ जी, प्रॉपर ऑफिस है, 1,000 square feet का ऑफिस है, हमारे एम्प्लॉय आपकी वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। नंबर अगेन 437-264-3175।
0: सरांश एक गाना है पंजाबी का, उसमें लिरिक्स ये हैं कि ना पैसा पैसा करया कर, एवे ना तू डरया कर, मैं मी बरसा दू पैसे दा, जे तू हो जाए मेरी सो, आप भी पैसे का मी बरसा रहे हो,
2: जरिया है छोटा सा बस, बाकी गवर्नमेंट ने ले ली थी क्योंकि गवर्नमेंट ने कल ही $100 million लॉन्च करा है, देश के बाहर ही पैसा स्पेंड होगा स्पोर्ट्स में, किड्स स्पोर्ट्स के लिए देश।
0: राज इतनी इतनी देखो इतनी डिटेल देने की कोई बात लोड नहीं है, अगर कोई सुन रहा है उनको पता है कि पैसे मर रहे हैं, उन्होंने वैसे भी कॉल कर लेनी है। सो सरांश नु फोन करो भाई 437-264-3175, 437-264-3175, 437-264-3175। सरांश थैंक यू,
2: थैंक यू,
0: धन्यवाद। ओके सो एक कुड़ी गाना लाना भाई ने रिक्वेस्ट की है तो वह भी थोड़े लिए लाने हैं, नाल दी नाल थानू असी जानकारी एक जरूर दे दी है, दो जॉब्स ने, एक तो मकैनिक की लोड़ है, एक ट्रैकिंग कंपनी है, एक साल के एक्सपीरियंस मकैनिक की जल्दी लोड़ है, ब्रैम्पटन च काम है, वधिया पे है, वड्डी कंपनी है, 416-616-3345, 416-616-3345 ते कॉल कर लो, ठीक है। एक मैं थानू लवाना वैलनेस स्पा बारे दस दवा, लेडीज वीकेंड है, टॉर्च और कढ़ो थोड़ी जी, जिहड़े वीर ने तुसीं भी कढ़ लो कोई गल नहीं, बट लेडीज नूं थोड़ा शौक हुंदा ज्यादा। लवाना वैलनेस स्पा 341 पार्कर स्क्वेयर एयरपोर्ट स्टील्स ते ने, इन्हां कोल RMT अवेलेबल है मसाज लई, डायरेक्ट बिलिंग इंश्योरेंस नूं, हाइड्रा फेशियल 150 वाला मेरा नाल है जो $130 च, लेजर हेयर रिमूवल 250 की थान से मेरा नाल है जो $200 च, वैक्सिंग 120 की थान से $100 च, 341 पार्कर स्क्वेयर लवाना वैलनेस स्पा, 416-881-5385 कॉल जरूर जरूर जरूर करो। सो गाना लाने एक कुड़ी ते फिर वापस आके बाकी गल्लां बातें करते हैं, जुड़े रहो वन एंड ओनली पंजाबी दरा। प्रभ संधु जी भी पहुंचे हुए स्टूडियो, प्रभ नाल